0: तेरी जगह कोई और होता तो मैंने उसकी जबान काट ली होती। देख विजय, माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। भगवान के लिए उसे गालियां मत दे। तू मेरा यकीन क्यों नहीं करता कि मेरे पिता तेरे बाबूजी के कातिल नहीं?
1: अरे वो जलील क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं, और तेरी रगों में उसी का गंदा खून बह रहा है, इसका यकीन भी अब मुझे होने लगा है।
0: जिस खून को तू गंदा कह रहा है उसी के खून की वजह से तू अभी तक जिंदा है विजय, वो देख।
1: तो अपनी बाप की बिरादरी के खाए पिए पिल्ले साथ लेकर आए हो?
0: नहीं, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी, आज मैं इसे जिंदगी की फीक दे रहा हूं। हिसाब बराबर?
2: तेरा हिसाब, तेरी कस्में, तेरी जबान। कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, मैंने नेकी करके गंदे नाले में डाल दी।
0: बस विजय बस, इसके आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ
1: पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, सांप की औलाद को कितना भी दूध पिलाओ आस्तीन का सांप।
0: अपनी जबान रोक ले विजय, 100 गालियों के बाद भगवान से भी सब्र नहीं हुआ था। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ।
1: इंसान नहीं, इंसान के नाम पर कलंक, दोस्ती के नाम पर धब्बा।
0: इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोल रहा विजय।
1: अगर तुम मेरी जबान रोकना चाहते हो अजय, तो कह दो कि तुम मेरे दोस्त हो, उस जलील

हाँ पिलो अतिशया जा मी दाम प्यारी ते किकी जिया दीगवा माचे छे दीपनी अजाऊं से तो अपने नारबिया मिशा प्यामी अच्छे से दिया दीमावा मिस मिस विस्की विस्की अच्छे से चारुए हिगा सोमी सुराने ये गे मयोले मू तभी मयोबिले मू दी योबिले मू दी दादा ते साशिं बीबी अच्छे से मी मचोरो अच्छे तो दियो म पिसे बिन्याने मुए यो नाये चिदी मयो नाये मचिबी मचिबी दाला कोई मिटाचिं टुई